नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः।

मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशय हराय

तो साई विठ्ठल भजो। विठ्ठल भजो साई विठ्ठल भजो। पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठल भजो। पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठल भजो। पृथ्वीवासा साई देव विठ्ठल।